नमः। ॐ श्री साई कनकांबर धारिणे नमः। ॐ श्री साई अद्भुतचर्याय नमः। ॐ श्री साई आपद्बांधवाय नमः।

सिपाही सब सिपाही हे मसाई चाहिए सच्ची बात प्रेम बाप चाहिए लाभ नहीं तो कुछ नहीं तो